0: अनुसार बाजोपन पाठेघर को कैंसर को जांच तथा परामर्श
1: वरिष्ठ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमन श्रेष्ठ द्वारा क्रिटिकल केयर परामर्श तथा उपचार सेवा
2: अन्य ओपीडी सेवा शनिवार बाहेक प्रत्येक दिन बिहान 10 बजे देखि साँझ 6 बजे सम्म सुन्नुहोस् त मेडिकल अफिसर डाक्टर योगेन्द्र थापा र डाक्टर रोशन कुमार यादव द्वारा 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा उपलब्ध छ
3: युनाइटेड अस्पताल बाढगंगा 4 ठाकुरापुर कपिल वस्तु संपर्क 076-550-200 मोबाइल नंबर 98-570-55-138
1: अब ढुक्क हुनुहोस् विशेषज्ञ डाक्टर को सलाह लिनुहोस् युनाइटेड अस्पताल मै

0: वरिष्ठ जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर सन्तोष पौडेल द्वारा यस युनाइटेड अस्पतालमा विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा तथा परामर्श सेवा उपलब्ध रहेको छ। पित्त थैलीमा पत्थरी, हर्निया, एपेन्डिक्स आदिको दूरबीन प्रविधि द्वारा अपरेशन, स्तनमा गाँठा गुठी, फोका, घाउ, पाइल्स तथा अन्य शल्यक्रिया सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म विशेषज्ञ डाक्टरसँग परामर्श तथा आवश्यक उपचार सेवा लिन सक्नु
1: वरिष्ठ प्रसूति तथा महिला रोग विशेषज्ञ ल्याप्रोस्कोपी सर्जन डाक्टर सन्देश आचार्य द्वारा गर्भवती महिलाको नियमित जाँच, डेलिभरी तथा शल्यक्रिया, पाठ्यघर सम्बन्धी सम्पूर्ण शल्यक्रिया, दूरबीन प्रविधि द्वारा अपरेशन, परिवार नियोजन तथा बन्ध्याकरण सेवा, महिनावारी गडबडी, तल्लो पेट दुख्ने तथा फोहोर पानी बग्ने समस्याको उपचार, बाजोपन, पाठ्यघरको क्यान्सरको जाँच तथा परामर्श।
2: वरिष्ठ एनोस्थेसियोलोजिस्ट डाक्टर सुमन श्रेष्ठ द्वारा क्रिटिकल केयर परामर्श तथा उपचार सेवा।
0: अन्य ओपिडी सेवा शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन बिहान 10 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म। सुन्नुहोस् त मेडिकल अफिसर डाक्टर योगेन्द्र थापा र डाक्टर रोशन कुमार यादव द्वारा 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा उपलब्ध छ।
3: युनाइटेड अस्पताल पाटगंगा 4 ठाकुरापुर कपिलवस्तु, सम्पर्क 076-550-200, मोबाइल नम्बर 98-570-55-138।
2: अब ढुक्क हुनुहोस्, विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस् युनाइटेड अस्पतालमै।

0: बाबा।
1: आओ डॉक्टर। सारी बात मेरे समझ में विश्व।
0: मम्मी तब कस्तो
2: म ठिक छु सरी।

0: एलर्जी अनुहार को चाया पोतो डंडी फोर दाग सेतो दुबी छाला में चलाने तथा सोराइसिस रोग को पंचकर्म द्वारा सफल उपचार तथा परामर्श
1: दैनिक बीएमएस डाक्टर दिनेश थारू द्वारा चेक जांच तथा परामर्श सेवा प्रत्येक महीना को पहिलो र तेस्रो शनिवार बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर हरिशंकर चौधरी द्वारा चेक जांच तथा परामर्श सेवा संपर्क उत्तम फार्मेसी कुकुब आयुर्वेद औषधालय बारदिंग चार बुद्ध चोक कपिल वस्तु मोबाइल 9894 64666 र 9824 15291
0: सुन्नुहोस् त हामी कहाँ बिना अपरेशन छार सूत्र विधि द्वारा 22 फिस्टुला र फिसरको सफल उपचार गरिन्छ।

0: पेंसिल पैक किन लीजिए जहिया फेन जहाँ फेन पैक खरीद करी तो 20% फन कैश फिर तक एनसेल ऐप में क्लेम करी
1: कैश फिर तक ले लीजिए
0: एनसेल पैक किन लीजिए शर्त लागू हुई एनसेल नेपाल के लग
2: शिव मंदिर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह को साधारण सभा होने बारे सूचना शिव मंदिर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बारगंगा नगरपालिका एक बुंची कपिल वस्तु को 20 वार्षिक साधारण सभा यही मिति 2083 श्रावण 28 गते बिहीबार बिहान को 11 बजे श्री पेज होटल एंड रिसोर्ट बारगंगा 4 दरखास्त कपिल वस्तु में होना गई रहेकोले संपूर्ण उपभोक्ता सलाहकार तथा विभिन्न संघ संस्थाहरूलाई पत्र पठाइएको छ। कारणवश पत्र प्राप्त हुन नसकेमा यही सूचनालाई आधार मानी साधारण सभालाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल बनाउन यहाँको उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। अनुरोधक शिव मंदिर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बारगंगा नगरपालिका एक बुंची कपिल वस्तु अध्यक्ष झलक मल्ल ठकुरी

0: लीटे
1: एंसल पैक किन लीटे जहिया फेन जहाँ फेन पैक खरीद करी तो 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लीटे कैश फिर तक ले लीटे
1: एंसल पैक किन लीटे सर लागू हुई एंसल नेपाल के लग
2: शिव मंदिर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह को साधारण सभा होने बारे सूचना शिव मंदिर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बाणगंगा नगरपालिका एक बुंची कपिल वस्तु को 20th वार्षिक साधारण सभा यही मिति 2083 श्रावण 28 गते बिहीबार बिहान को 11 बजे श्री पेज होटल एंड रिसोर्ट बाणगंगा 4 दरखास्त कपिल वस्तु में होना गई रहेकोले संपूर्ण उपभोक्ता सलाहकार तथा विभिन्न संघ संस्थाहरूलाई पत्र पठाइएको छ। कारणवश पत्र प्राप्त हुन नसकेमा यही सूचनालाई आधार मानि साधारण सभालाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल बनाउन यहाँको उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। अनुरोधक शिव मंदिर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बाणगंगा नगरपालिका एक बुंची कपिल वस्तु अध्यक्ष झलक मल्ल ठकुरी

सिजन बुद्ध आवाज बागडिंगा नगरपालिका चार गजहेडा कपिल वस्तु फोन नम्बर 98570-51-181 98570-50-757 98470-12-919

0: अब जाए के घर के दीवार लिपोती के उड़ाए लाग।
1: मुस्कान बिटिया, ए मुस्कान बिटिया, घर के दीवार लिपोत के नाई खत्म भवा, खेत में काम करे वाले का नहारी लेके जाए के रहा।
0: उड़ाए लाग अम्मा।
1: ए अच्छा, हम नहारी बनाए के धई दे थे, अब भी लेके चली जाओ।
0: होते अम्मा। ओहो, यही देवालिया में बिल है, माटी से बंद कर दे पड़ा की काओ। हाँ, अब बंद कर दे थे।
2: अरे बापा रे अम्मा, हमें साफ दसलीस।
1: अरे बाप रे बाप, कहाँ दसलीस बिटिया?
2: यही दही रे हाथ में दसलीस अम्मा।
1: अरे अरे क्यों क्यों, अरे है क्यों, हमरे मुस्कान बिटिया का साफ दसलीस, अरे क्यों है क्यों है?
3: अरे कहाँ हुई गवा, कहाँ हुई गवा काकी?
1: राकेश बाबू देखो ना, मुस्कान का सांप दसलीस की काओ।
3: ना घबराओ जय काकी, मुस्कान ना घबराओ, शांत हुई के बैठी रहो काकी, बल्कि मुस्कान का सीधा सुताव जाए और ना हिलाव जाए।
1: वो थे बाबू, मुस्कान मुस्कान बेटा सीधा हुई की सुतो।
0: होता है
3: काकी, आप मुस्कान के पहिरा कपड़ा और गर गहना ढीला कह दिया जाए, न कस जाए के मेर से, और हाथ के चूड़िया खोल दिया जाए, दस लिया ओकरा हाथ न चलाव जाए।
1: होते बाबू, और सब दस लिया जगह के आसपास काट के इंजेक्शन से तान के या मुंह से चूस के विष निकाले के होए की?
3: नहीं काकी नहीं, सब दस लिया घाव के आसपास काटे जारे चूसे के काम नहीं करे चाहिए, और कुछ नहीं खियावे चाहिए, पनियो नहीं, बुझा गए ना?
1: तब तो गहर मोहरा लाई के कपवा डसी लिए जगह पर लगाई दे तो बाबू।
3: वो नहीं काकी, घरेलू उपचार जैसे कि जहर मोहरा, जंगली घास पात और जड़ी बूटी के प्रयोग नहीं करे चाहिए, बुझा गए ना?
1: बुझेन बाबू बुझेन।
3: काकी बल्कि रमेश का मोटरसाइकिल लेके आवे कहा जाए ना, जल्दी से जल्दी साधन खोज के एंटी वेनम दे जाए वाले स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाए, मिला तो मुस्कान का जल्दी ठीक हो जाये। कहा जाए तब तक हमरिन के गांव से कौन एंटी वेनम केंद्र नजदीक पड़ता है, हम snakebitenepal.org के वेबसाइट में खोजित है। हाँ डाटा हम कैसे देखे करा। हाँ देव snakebitenepal.org वेबसाइट खुली गवा, हमरिन के गाँव से तो गुरु सिंहिया सर्पदंश उपचार केंद्र में सर्पदंश के उपचार कई जात है, मुस्कान का वहीं ले जाके पड़ा।
1: राकेश बाबू मोटरसाइकिल लेके रमेश आई गए।
3: काकी हम मुस्कान का न हिलाए के मोटरसाइकिल के सीट के बीच में बैठाए के अपने पीछे से पकड़ के बैठा जाए, जल्दी से जल्दी सर्पदंश उपचार केंद्र में पहुँचाए, मिला तो मुस्कान का बचाए सका जाता है।
1: जी वो थे बाबू, चलो।
4: याद रखा जाए, सांप डस लिए के बाद मोटरसाइकिल स्वयं सेवी बुलावा जाए, सर्पदंश उपचार केंद्र ले जाए के जान बचावा जाए, या कौनो सवारी साधन उपलब्ध न रहा अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी के फोन पता लगाए के फोन से सुझाव लिया जाए।
5: वही मेर से मरीजों का सांप से सावधान रहे के चाहिए, मरीगवा सांप का झटपट छुए और चलावे के नहीं चाहिए, कबो काल सांप मरीगवा है सोचा जाता है लेकिन वो डस सकत है, संभव हो तक डसे वाला सांप के फोटो खींच के डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी का दिखाए पर वो लोग का सांप विषालु है कि नहीं पहचान करके सही उपचार करे में सहयोग करत है।
4: सही समय पर उपचार किए पर सांप डस लिए व्यक्ति का बचाई सका जाता है और ऐसे हो सके वाला मृत्यु दर कम कर सका जाता है। सांप डस लिया व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में ले जावा जाए, ऐसे वह व्यक्ति के जीवन बचावे की मदद करत है। विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नक्चरवे के उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के खातिर आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाए के आवश्यक जानकारी ले सका जात है।
6: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
7: पाल्पा भैरव मेडिकल हल बुटवलको अत्यन्त जरुरी सूचना।
8: विगत 25 वर्षदेखि मुटु तथा छाती र छाला रोगको सफल उपचार सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेकोमा यही असोज 25 गतेदेखि काठमाडौँ B&B हस्पिटलका हाडजोर्नी नसा तथा लिगामेन्ट विशेषज्ञ र आमदा अस्पतालका बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा समेत बिरामी जाँच गरिने भएकोले उल्लेखित समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ।
7: ब्लड प्रेसर, सुगर, थाइराइड, मुटु रोग, छाती रोग, ग्यास्ट्रिक सर, निमोनिया, चक्कर लाग्ने, लुतो, दाज, पुतले, दुबे, चाया, डन्डीफुर, पुरानो घाउ खटिरा, यौन दुर्बलता, सेतो पानी बग्ने, यौनाङ्गका घाउ खटिरा, कपालको रौँ झरिरहने, हाड जोर्नीका समस्याहरू, प्यारालाइसिस, जोर्नीहरू दुख्ने, नचल्ने, नसा च्यापिएको, ढाड कम्मर दुख्ने, मेरुदण्ड र घुँडाको समस्या, लिगामेन्ट च्यापिएको, भाँचिएको, हाड जोर्नीका विशेष अपरेसन र बालरोगसँग सम्बन्धित सबै समस्याहरूको विशेषज्ञ चिकित्सकहरूद्वारा जाँच तथा उपचार गरिन्छ।
8: सम्पर्क पाल्पा भैरव मेडिकल हल श्रवण पथ बुटवल साझा हस्पिटलको अगाडि।
7: सम्पर्क नम्बर 071-534-905, 071-553-905 र मोबाइल 98-570-78-010।
9: सम आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरूमा हार्दिक निमन्त्रणा। भगवान शिवको आराधना र पूज्य महिना श्रावण महिनाभर पवित्र धार्मिक अनुष्ठानले भरिपूर्ण प्रसिद्ध तीर्थस्थल भगीरथी नदीको गंगाजल सँगै पवित्र पावन भूमि लक्ष्मण घाट बोलबम धाममा यही मिति 2083 श्रावण 13 गते गुरु पूर्णिमाको दिनदेखि भाद्र 12 गते जनै पूर्णिमासम्म निरन्तर श्रावणी बोलबम धार्मिक मेला सञ्चालनमा रहने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनज्यूहरूमा जानकारी गराउँदछौ।
10: बोलबम धाममा गई सातौं भागीरथी नदीमा स्नान गरी धामका पुजारीहरूबाट विधिवत रूपमा जल संकल्प गराई 108 शिवलिङ्ग र शिव मन्दिर लगायत यस धाममा अवस्थित विभिन्न मठ मन्दिरमा जलार्पण तथा पूजा अर्चना गरी अनन्य पुण्य आर्जन गर्नुहोस्।
9: मेला अवधिभर प्रत्येक आइतबार बेलुका 9 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म कपिल वस्तु युवा भजन समूहको बेजोड भजन प्रस्तुति रहनेछ। बोलबम मेला अवधिभर प्रत्येक आइतबार साँझ 6:30 बजेदेखि गंगा आरती शुरू हुने जानकारी गराउँदछौ।
10: आरतीमा मूलकर्ता र कर्ताको रूपमा सहभागी हुन चाहने भक्तजनहरूले अग्रिम नाम टिपाई आरतीमा सहभागी हुन सकिने पनि यसै सूचना मार्फत जानकारी गराउँदछौ। नाम टिपाउनको लागि सचिव प्रकाश भूषाल 98-471-2430,
9: कोषाध्यक्ष तुलसी थापा मोबाइल 97-688-35-013,
10: सरिता थारो 98-79-0-56-12 तथा प्रचार प्रसार समिति।
9: पवित्र भागीरथी नदीको गंगा जलबाट श्रद्धा भक्ति र आस्था सहित पवित्र पुण्य भूमि लक्ष्मण घाट बोलबम धाममा भगवान शिवलाई जलाभिषेक गरी पुण्य लाभ प्राप्त गर्नुहोस्।
8: धाम परिसर क्षेत्रमा मदिरा पदार्थ बिक्री वितरण तथा सेवनमा रोक लगाइएको जानकारी गराउँदछौ। यदि कसैले सो कार्य गरे वा गराएमा कानून अनुसार कारवाही गरिने बेहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।
9: आयोजक लक्ष्मण घाट बोलबम धाम विकास समिति बाणगंगा 6 कपिल वस्तु अध्यक्ष रणबहादुर काउचा मोबाइल 98-664-37-30 सह आयोजक लक्ष्मण घाट सामाजिक विकास केन्द्र र कपिल वस्तु युवा भजन समूह संरक्षक बाणगंगा नगर पालिका वडा नम्बर 6 को वडा कार्यालय।

0: रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 मेगाहर्जमा सुन्न नभुल्नु होला।
1: यति बेला साँझको 7 बज्यो।

0: प्रकार को रसायन केमिकल न मिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्य श्री
1: रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन

0: पिता ले लीते
1: एंसल पैक किन लीते
2: जहिया फेन जहाँ फेन पैक खरीद करी तो 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश पिता ले लीते कैश पिता ले लीते
2: एंसल पैक किन लीते शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग